0: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़ FM 100.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह

कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम और घर आंगन कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त अमित कमल आपका स्वागत करती हूं। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। और दोस्तों इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव से बड़ा शिक्षक इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप भी अपने अनुभव से सीखिए और तरक्की कीजिए। और ये जो कार्यक्रम है घर आंगन कार्यक्रम, जिसमें हम आपके घर की और आपके हित की बात करते हैं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म चरित्रहीन से। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और घर आंगन कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए योग से जुड़ी हुई बातें लेकर आ रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करीब ही है। और दोस्तों, ऑफिस में काम कर करके हम थक जाते हैं पर समझ में नहीं आता कि हम समय कैसे निकालें, उसी पर आज हम बात करेंगे कि आप ऑफिस में योगा कैसे कर सकते हैं। ऑफिस में योगा करना ऊर्जा बढ़ाने, कमर दर्द या कंधे के दर्द से राहत पाने का एक फायदेमंद तरीका हो सकता है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं और थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो आप वहीं बैठकर कई तरह के योगासन कर सकते हैं। आज हम आपके साथ कुछ योगासन साझा कर रहे हैं जो आपके ऑफिस में काम करने वालों के लिए एकदम सही है ताकि वो आप अपने ब्रेक टाइम का भरपूर फायदा उठा सकें। सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने ऑफिस के कपड़े पहने हैं उन्हीं में आप ये आसन कर सकते हैं। और ऑफिस में किए जाने वाले इन योगासन में से किसी को भी करने से पहले दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप इसके लिए कर सकते हैं बैठे बैठे ट्विस्ट। जी हाँ, डेस्क पर बैठकर योगाभ्यास करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है दोस्तों, एक साधारण बैठे हुए ट्विस्ट से शुरुआत करें। सबसे पहले आपको कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठना है। सांस लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और सांस लेते हुए दाईं ओर मुड़ें। सहारा लेने के लिए दोनों हाथों को दाईं ओर की ओर आर्म रेस्ट पर रखें। अगर कुर्सी में आर्म रेस्ट नहीं है तो आप दाहिना हाथ सीट पर अपने कूल्हे के पीछे रखें और बायां हाथ अपनी दाहिनी जांघ पर रखें। हर सांस के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें जिससे आपका शरीर आसन में और गहराई तक खिंच सके। प्रत्येक तरफ 60 सेकंड तक आसन को रोकें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। और एक और आसन है दोस्तों, कंधे को ऊपर नीचे करना। सांस लेते समय अपने कंधों को कानों की ओर ऊपर उठाएं और फिर नीचे लेकर जाएं। सांस छोड़ते समय उन्हें नीचे और आगे की ओर ले जाएं। इस क्रिया को इसी दिशा में दो बार दोहराएं और फिर विपरीत दिशा में करें। बैठकर पीठ झुकाने वाला आसन भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए टीम के साथ आपको कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग सेशन के बाद थोड़ी बदहजमी महसूस होती है तो फैन पोज पेट को हल्का सा स्ट्रेच देता है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अपनी कुर्सी के अगले किनारे पर बैठें और अपने पैरों को फर्श पर रख लें। अपनी पीठ कुर्सी से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए और आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं। आगे की ओर झुकें और अपनी बाहों को पीछे की ओर ले जाकर कुर्सी को पकड़ लें। अपनी कोहनियों को यथासंभव सीधा करने का प्रयास करें। तो है ना ये आसान से आसन जिन्हें आप ऑफिस में कर सकते हैं।

हेमलता की आवाज में ये गीत आपने सुना, आप तो ऐसे ना थे। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से

मंत्रालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त सन 1947 है, लेकिन आजाद भारत का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां आजादी के बाद भी कई बरस तक विदेशियों का शासन रहा और इसे आजाद होने में 14 बरस और लगे। ये हिस्सा था देश का तटीय इलाका गोवा, जो उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। दरअसल सन 1946 में जब ये साफ हो गया कि अंग्रेज अब भारत में अधिक समय तक अपना राज शासन नहीं चला पाएंगे, तब राष्ट्रीय नेता ये मानकर चल रहे थे कि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली भी गोवा छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले राम मनोहर लोहिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यही वजह है कि लोहिया ने 18 जून सन 1946 को गोवा पहुंचकर पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में हजारों गोवा वासियों ने शामिल हुए और आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हालांकि कई साल के संघर्ष के बाद गोवा को सन 1961 में आजादी मिली। 18 जून को गोवा की आजादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज है गोवा क्रांति दिवस।

1971 में आई फिल्म पराया धन से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे डेज ऑफ द डे की और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में अक्सर लोग पिकनिक पर जाना पसंद करते हैं और प्रकृति के बीचों बीच बैठकर उस समय का आनंद उठाते हैं। इतना ही नहीं, अपने साथ बहुत सारे आउटडोर गेम्स भी लेकर जाते हैं। करीब एक सप्ताह पहले ही सभी जोरों शोरों से इसकी तैयारी करते हैं, पर आपको पता है इसके लिए भी एक खास दिन है जो है आज यानी 18 जून को। जी हाँ दोस्तों, 18 जून को हर साल विश्व पिकनिक दिवस मनाया जाता है और पिकनिक का नाम सुनते ही बच्चों और बड़ों के चेहरे पर बहुत सी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन एक सवाल जरूर सबके मन में आता है, वो ये कि पिकनिक शब्द आया कहाँ से। दोस्तों, कहा जाता है कि पिकनिक शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति के बीच में बैठकर भोजन या नाश्ता करना। ऐसा भी कहा जाता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद ही ये ट्रेंड काफी पॉपुलर हुआ और पूरी दुनिया में इसे अपना लिया गया। आधुनिक पिकनिक का श्रेय फ्रांसीसियों को दिया जाता है, लेकिन वैश्वीकरण और व्यक्तिगत संस्कृतियों का भी इस पर व्यापक असर हुआ और लोकप्रियता भी हुई। जैसे जैसे पिकनिक की अवधारणा फैली, विभिन्न स्थानों पर अनेकों परंपराएं विकसित हुईं। विश्व भर में शायद ही कोई ऐसी संस्कृति हो जो अपने तरीके से पिकनिक ना मनाती हो। और पिकनिक इतनी अच्छी सी जानकारी के साथ आपके लिए है एक प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज है आशा जी, दिलराज कौर व साथियों की। फिल्म का नाम है सत्य पे सत्ता।

एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन, और घर आंगन में घर के सभी विषयों पर बात हो और बच्चों पर बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश पंजीकरण 10 जून से शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 350 छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। यूनिवर्सिटी भारतीय सेना के साथ मिलकर घुड़सवारी में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा कोर्स भी इस बार शुरू कर रही है। ये देश में अपनी तरह का पहला कोर्स होगा। विश्वविद्यालय ने अपना प्रवेश प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया है और इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और आपको बता दें दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। इस बार यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी बड़ी राहत देते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की व्यवस्था

ही स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को शैक्षणिक शुल्क में 100% तक छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। खेल यूनिवर्सिटी की ओर से पहली बार सेना के घुड़सवारों को भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। घुड़सवारी में प्रवेश और प्रशिक्षण के मानक सेना के अनुरूप ही होंगे। और आपको बता दें, राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को तैयार करना है। ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। आवेदन करने के बाद यहां संभावित रूप से दोस्तों 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच फिजिकल फिटनेस टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंतिम मेरिट सूची अगस्त में जारी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट sportsuniup.com पर विजिट कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, SPO

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना मेरे हमदम मेरे दोस्त से। दोस्तों हौसले बुलंद हों और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पहचान बन चुकी लीला खटीक आज आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। पिछले 25-26 सालों से उनकी उसी जगह पर फलों की दुकान लगाने वाली लीला ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो समाज की हर महिला को प्रेरित करता है। एक समय था जब लीला के सामने परिवार का पालन पोषण और दो वक्त की रोटी का बड़ा संकट था। उन्होंने बेहद कम लागत के साथ फ्रूट बेचना शुरू किया, लेकिन उनकी मेहनत और सही समय पर मिली सरकारी मदद ने उनकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। लीला खटीक की इस कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का बड़ा योगदान रहा। लीला क्षेत्र की 10 महिलाओं के साथ मिलकर मधुर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। इस समूह के जरिए उन्हें बैंक से आर्थिक मदद मिलने शुरू हुई। लीला को शुरुआत में बैंक से बहुत छोटी राशि मिली। पहले 7,000 रुपये मिले, फिर 30,000 और फिर 60,000 रुपये की मदद मिली। इसके बाद धीरे धीरे ये मदद 8,00,000 रुपये तक पहुंच गई। दोस्तों नियम ये है कि आप जैसे जैसे ईमानदारी से लोन की किश्त जमा करते जाते हैं आपका क्रेडिट बढ़ता जाता है और बैंक आगे और भी मदद करता है। फलों के इस कारोबार और बैंक से मिली मदद के बूते लीला ने न सिर्फ आजादी पाई बल्कि एक माँ के रूप में अपने सारे कर्तव्यों को निभाया। उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने 5 बच्चों की परवरिश की। आज उनके बच्चे सेटल हैं और फल बेचकर ही लीला ने अपना खुद का घर और मकान भी बनवाया है। उम्र के इस पड़ाव पर जब लीला को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, लीला की ये कहानी संदेश देती है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर जज्बा हो तो आप किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

आशा जी की आवाज में ये गीत आपने सुना खुशबू फिल्म से। दोस्तों, एक समय था जब छुट्टियां शुरू होते ही सभी को नानी दादी के घर जाने की बड़ी दिलचस्पी होती थी। जैसे जैसे समय बदला, इसमें भी तकनीक ने अपनी जगह बना ली। जी हाँ दोस्तों, आजकल की छुट्टियों का ट्रेंड जो है तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक रूप से नानी दादी के घर बिताए जाने वाली गर्मियों की छुट्टियों की जगह अब बच्चे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और रोबोटिक्स जैसे नए जमाने के स्किल्स सीखने जैसे कैंप्स में जाना पसंद करते हैं। माता पिता भी बच्चों को रचनात्मक और भविष्य के लिए तैयार करने वाले समर कैंप्स में भेजना पसंद कर रहे हैं। और इस बदलते ट्रेंड के प्रमुख कारण है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे तकनीकी रूप से मजबूत हों, ताकि वो आने वाले समय में तकनीक की दुनिया में पीछे ना रहें। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि कोडिंग और रोबोटिक्स से बच्चों की तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल थिंकिंग और समस्या सुलझाने का जो कौशल है वो बढ़ता है। इसलिए भी माता पिता बच्चों को इन कैंप्स में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं। और साथ ही माता पिता चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने या टीवी देखने की बजाय कुछ नया और प्रोडक्टिव सीखें, जिससे वो उनके भविष्य में काम भी आए। दोस्तों, इन कैंप्स में बच्चे खुद से वीडियो गेम, वेबसाइट या छोटे रोबोट्स बनाना सीखते हैं और कैंप के आखिर में इन्हें सर्टिफिकेट भी मिलता है जो उनके बायोडाटा और भविष्य के लिए काम आता है। है ना फायदे का सौदा।

बात हो और आपकी सुंदरता की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे घर पर लौंग का मॉइस्चराइजर बनाना। जी हाँ, लौंग मॉइस्चराइजर बनाने के लिए आप जो है, बताने से पहले उसके फायदे आपको बता देते हैं। लौंग मॉइस्चराइजर मुहासों, दाग धब्बों और झुर्रियों को दूर करने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। इसे बनाने का सबसे आसान और असरदार जो तरीका है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके लिए एक छोटे बाउल में एलोवेरा जेल और गुलाब जल को अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें 6 या 8 लौंग को साबुत डाल दें और इसे अच्छे से मिलाएं और इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल निचोड़ लें। फिर इसे किसी शीशी या एयर टाइट कंटेनर में भरकर 24 से 48 घंटे के लिए रख दें। ध्यान रहे, कंटेनर या शीशी कांच की होनी चाहिए ताकि लौंग के सभी पोषक तत्व जेल में आ जाएं। 24 या 48 घंटों बाद लौंग को इसमें से बाहर निकाल लें और अब आपका मॉइस्चराइजर तैयार है। इसे इस्तेमाल करने के लिए रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें। अब इस मॉइस्चराइजर को थोड़ा सा हाथ पर लेकर चेहरे और गर्दन की अच्छे से मसाज करें और इसे रात भर लगा रहने दें और सुबह उठकर सामान्य पानी से चेहरा धो लें। और दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। नोट कर सकते हैं आप हमारा मेल आईडी fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से। और स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। तो मेल आईडी एक बार फिर से नोट करें fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतजार। इसी के साथ घर आंगन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

Angın. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा पेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रूपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्वकप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस प्रोग्राम में।

श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक युग बन जाती है। 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम ऐसी ही एक फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन के आसिफ ने किया। अमन, कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा, एहसान रिजवी और के आसिफ की लिखी इस कहानी ने सलीम और अनारकली के प्रेम को ऐसे अंदाज में पर्दे पर लेकर आई कि आज भी इसका जिक्र होते ही फिल्म की यादें ताजा हो जाती हैं। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ सत्ता और स्वाभिमान का संघर्ष, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी रही। रिलीज के इतने वर्षों बाद भी मुगले आजम का जादू कम नहीं हुआ। इस फिल्म की भव्यता, कॉस्ट्यूम, शानदार संवाद, दमदार अभिनय, खूबसूरत संगीत और बड़े बड़े सेट आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस दौर में चर्चा का विषय बने। लेकिन मुगले आजम सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही नहीं बल्कि इससे जुड़े कई दिलचस्प किस्सों के लिए भी याद की जाती है। तो आइए दोस्तों, आज के शाही सफर में चलते हैं और बात करते हैं भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मुगले आजम की और जानेंगे इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें जो शायद ही आपने पहले सुनी होगी।

श्रोताओं, अब बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने मुगले आजम के किरदारों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन मुगले आजम की शुरुआती स्टार कास्ट कुछ और थी। फिल्म पर काम 1940 के दशक में शुरू हुआ था और उस समय चंद्रमोहन, डीके सप्रू और नरगिस जैसे कलाकारों को लिया गया था। लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद फिल्म का निर्माण रुक गया। बाद में जब फिल्म दोबारा शुरू हुई तो अकबर के रूप में पृथ्वीराज कपूर, शहजादा सलीम बने दिलीप कुमार और अनारकली के रूप में नजर आई मधुबाला। इसके अलावा दुर्गा खोटे, अजीत, नाजिर, जॉनी वॉकर, बेबी तबस्सुम और शीला दलाया साथी कलाकारों के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म को यादगार बनाने में कलाकारों की मेहनत का भी बड़ा योगदान रहा। फिल्म के क्लाइमेक्स में काल कोठरी वाले सीन के लिए मधुबाला को असली लोहे की भारी जंजीर पहननी पड़ी थी। लंबे समय तक उन्हें पहनकर शूटिंग करने की वजह से उनके हाथों पर निशान तक पड़ गए थे। वहीं दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर ने भी अपने किरदारों को वास्तविक दिखाने के लिए भारी पोशाकों और कवच में शूटिंग की। के आसिफ अपने काम में किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। पृथ्वीराज कपूर का सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले सीन को तपती धूप और गर्म रेत पर फिल्माया गया था। के आसिफ ने कहा था कि अगर तकलीफ ज्यादा हो तो इशारा कर दीजिएगा, शूटिंग रोक दी जाएगी। लेकिन पृथ्वीराज कपूर बिना रुके शॉट को पूरा किया। शॉट खत्म होने के तक उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। ये घटना बताती है कि उस दौर के कलाकार अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए कितनी लगन से काम करती थी। शायद यही वजह है कि आज भी जब मुगले आजम का जिक्र होता है तो उसके कलाकारों के समर्पण को उतने ही सम्मान और प्यार के साथ याद किया जाता है जितना फिल्म के रिलीज के समय किया जाता था। और अब बात फिल्म के बेहद लोकप्रिय गीत मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। इस गीत को तैयार करते समय खास ध्यान रखा गया था कि इसमें पुराने दौर की ठुमरी और दादरा की झलक दिखाई दे। वहीं इस गीत में कथक की खूबसूरती को दिखाने के लिए नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज जी ने मधुबाला को घंटों कथक का अभ्यास कराया ताकि गीत का हर भाव पर्दे पर परफेक्ट लगे। खास बात यह रही कि पूरे गीत की शूटिंग मधुबाला ने खुद की, किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। आइए सुनते हैं इसी सदाबहार गीत को।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने के बाद आप खुद भी समझ गए होंगे कि इस गीत में और इसके दृश्य जब ये नृत्य हो रहा था और मधुबाला जी ये नृत्य कर रही थी, तो आपने भी अगर ये फिल्म देखी होगी या ये गीत सुना होगा तो देखा होगा कि मधुबाला ने कितनी सुंदरता से इस कथक के भावों को उतारा है और कितनी सुंदरता से ये डांस को किया है। श्रोताओं, आगे बात करते हैं। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच मुगल काल में पहुंच गए हैं। के आसिफ के परफेक्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1952 में दोबारा शुरू हुई इस फिल्म को पूरा होने में करीब 8 साल लग गए। फिल्म में युद्ध के दृश्यों को वास्तविक दिखाने के लिए बड़ी संख्या में घोड़ों, ऊंटों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, कुछ दृश्यों के लिए भारतीय सेना की भी मदद ली गई थी। उस दौर में जब ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग एक या दो कैमरे से होती थी, मुगले आजम की कई दृश्यों को फिल्माने के लिए एक या दो नहीं बल्कि मल्टी कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह थी कि हर सीन बड़े पर्दे पर इतना प्रभावशाली दिखाई दिया। फिल्म के सेट, पोशाकें और गहनों पर भी खास ध्यान दिया गया था। देश के अलग अलग शहरों के कारीगरों ने मिलकर इन चीजों को तैयार किया था। हर छोटी सी छोटी चीजों में भी शाही अंदाज दिखाई दे, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। अकबर का किरदार निभा रहे पृथ्वीराज कपूर के लिए उन्होंने लगभग 4,000 रुपए के खास जूते बनवाए थे। जब कैमरामैन आरडी माथुर ने आसिफ से कहा कि ये जूते तो पर्दे पर ठीक से दिखाई भी नहीं देंगे, तो आसिफ जी का जवाब था, मेरे अकबर को तो पता होगा कि उसने क्या पहना है। और वही एहसास उनकी चाल में एक मुगल शहंशाह की शान बनकर नजर आएगा। कहा जाता है कि फिल्म में दिखाई गई भगवान कृष्ण की मूर्ति भी शुद्ध सोने की बनी हुई थी। तो श्रोताओं, चलते हैं अगले गीत की ओर, लेकिन उस गीत से पहले सुनेंगे एक छोटा सा संदेश।

0: रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है मुगले आजम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है मुगले आजम। श्रोताओं, मुगले आजम का सबसे चर्चित सेट था शीश महल, जिसे बनने में लगभग 2 साल का समय लगा। के आसिफ को इसकी प्रेरणा जयपुर के आमेर किले के शीश महल से मिली थी, लेकिन उन्हें भारत में वैसा शीशा नहीं मिला जैसा वे चाहते थे, इसलिए विशेष शीशा बेल्जियम से मंगवाया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिल्म को बेहतर बनाने पर था। वहीं फिल्म की लागत करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जो उस समय के हिसाब से बेहद बड़ी रकम थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी ने तय किया कि वो फिल्म का निर्देशन आसिफ से लेकर सोहराब मोदी को दे देंगे, लेकिन मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों ने के आसिफ का साथ दिया और कहा कि फिल्म को पूरी वही करेंगे। मुगले आजम को हिंदी, तमिल और अंग्रेजी 3 भाषाओं में बनाया जा रहा था। हर दृश्य और संवाद को तीन तीन

शूट किया जाता था। इसी वजह से फिल्म की शूटिंग के दौरान इतने फुटेज रिकॉर्ड हुआ कि उससे कई और फिल्में बनाई जा सकती थी, लेकिन के आसिफ ने वही दृश्य चुने जो उनकी नजर में सबसे बेहतरीन थे। और शायद यही वजह है कि मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अध्याय बन गई। तो श्रोताओं, चलिए चलते हैं इसी फिल्म से एक और बेहतरीन गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, फिल्म का संगीत तैयार किया था नौशाद ने और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। दोनों की ये जोड़ी उस दौर में कई यादगार गीत दे चुकी थी, लेकिन मुगले आजम उनके करियर की सबसे खास फिल्मों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि जब के आसिफ इस फिल्म का सपना लेकर नौशाद के पास पहुंचे तो वे अपने साथ पैसों से भरा एक ब्रीफकेस भी ले गए थे। आसिफ चाहते थे कि फिल्म का संगीत ऐसा हो जिसे लोग बरसों तक याद रखें, लेकिन पैसों की बात सुनकर नौशाद नाराज हो गए। बाद में दोनों के बीच गलतफहमियां दूर हुई और फिर नौशाद ने इस फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। नौशाद ने फिल्म के संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास, लोक संगीत की सादगी और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा की भव्यता को खूबसूरती से पिरोया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के गीत इतने महत्वपूर्ण थे कि वे फिल्म की कुल अवधि का लगभग एक तिहाई हिस्सा बन गए। फिल्म के अधिकांश गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था लता मंगेशकर ने। वहीं मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे महान कलाकारों की आवाजों ने भी इस संगीत को और भी यादगार बना दिया। दोस्तों, मुगले आजम के संगीत से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी है कि आसिफ चाहते थे कि फिल्म में तानसेन की आवाज के लिए किसी ऐसे कलाकार को लिया जाए जिसका शास्त्रीय संगीत में कोई मुकाबला ना हो। नौशाद इसके लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का नाम सुझाया, लेकिन शुरुआत में उस्ताद फिल्म के लिए गाने को तैयार नहीं हुई। काफी कोशिशों और बातचीत के बाद वे राजी हुए। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा फीस मांगी जिसे सुनकर उन्हें लगा शायद के आसिफ पीछे हट जाए। उस दौर में 25,000 रुपए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन उस्ताद की बात सुनते ही के आसिफ ने बिना एक पल गवाए अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और

बस सिर्फ 25,000 रुपए मंजूर है। इसके बाद उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने फिल्म के लिए प्रेम जोगन बनके और शुभ दिन आयो राज दुलारा जैसी यादगार रचनाएं रिकॉर्ड की, जो आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के इतिहास में विशेष स्थान रखती है। तो चलिए सुनते हैं एक और यादगार गीत।

दोस्तों, मुगले आजम कितनी शानदार फिल्म थी इसका अंदाजा इसकी रिलीज के समय दर्शकों के उत्साह से भी लगाया जा सकता है। साल 1960 में जब फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। तेज बारिश भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर पाई। उस दौर में 75 पैसे और 2 रुपए से मिलने वाले टिकट ब्लैक में 100 से 200 रुपए तक बिके थे। 4 अगस्त 1960 को जब फिल्म का भव्य प्रीमियर हुआ तो इसके प्रिंट को हाथी पर रखकर मराठा मंदिर थिएटर तक लाया गया। वो अपने आप में एक अनोखा दृश्य था और पूरे शहर में इसकी चर्चा थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के भव्य प्रीमियर में इसके दो सबसे बड़े सितारे दिलीप कुमार और मधुबाला मौजूद नहीं थे।

श्रोताओं, इस फिल्म को 3 अवार्ड्स मिले। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, साथ ही फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट डायलॉग के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि मराठा मंदिर सिनेमाघर में ये लगभग 77 वीक तक हाउसफुल चली।

ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

0: सरकार दी तालमेल वाली मोबखी रणनीति कैलिब्रेटेड सुरक्षा कारजा नक्सलवाद दे माली वसीलियां नूं रोकण अते तेज विकास दीआं कारवाईआं दे सुमेल दे नतीजे वजों देश नक्सलवाद ते माओवादी दहशत तों मुक्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा तौर ते ऐलान कीता सी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश विच नक्सलवाद नूं पूरी तरह खत्म कर दिता जाएगा ते ए वादा हुण पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ से बस्तर के एक निवासी ने सरकार दे यत्ना दी शलाघा करते हुए किया है कि इसने देश नो नक्सलवाद तो मुक्त करने अपने वादे नो निभाया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
0: झारखंड के गुमला जिले के निवासी टेम्बू ओराव ने कहा कि जब तो मोदी सरकार बनी है नक्सलवाद हौली हौली खत्म हो गया है, लोग शांति से सद्भावना नाल रह रहे ने।
2: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के जब में था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गांव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है। अब
0: आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी दहाके आदि हिंसा दौरान लोकतंत्र विकास संविधान दी जीत का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल मैं सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबर जलंधर।
3: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 औरतें शामिल ने। पुलिस ने दसा कि हादसा रात 2 बजे के करीब वापरिया। मुढ़ की जांच तो पता लगा है कि हादसा उस समय वापरिया जो ड्राइवर का वाहन से कंट्रोल नहीं रहा तो यह खड्ड में डिग पिया। पुलिस और स्थानक निवासियों की मदद न सारिया लाशा खड्ड विचों कढ़ ली गई ने। चंबा के पुलिस सुपरिटेंडेंट विजय सकलानी ने कहा कि लाशा को पोस्टमार्टम लिए चंबा के सरकारी मैडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अज श्री गुरु अर्जन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा पूरी श्रद्धा के सत्कार नाल मनाया जा रहा है। तरन तारण स्थित गुरद्वारा श्री दरबार साहब विखे विशेष समागम कराए जा रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंचकूला में गुरद्वारा श्री नाडा साहब विखे पहुंच के मत्था टेकया ते श्री गुरु अर्जन देव जी नूं श्रद्धा के फुल भेंट किए। इस तरह पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने भी श्री गुरु अर्जन देव जी नूं उन्हां दे शहीदी दिहाड़े ते श्रद्धांजलि भेंट की है। FIH महिला नेशनल कप हॉकी में आज न्यूजीलैंड में भारत ने उरुग्वे नूं 3-2 नाल हरा दिता है। भारत ने दीपिका ने 2 ते दीपिका सोरेंग ने 1 गोल किया। भारत ने पूल ए में सिखर ते रह के सैमीफाइनल लई क्वालीफाई कर लिया है। सैमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून नूं चिली ते कोरिया विचकार होने वाले मैच के जेतू नाल होगा। फीफा विश्व कप 2026 में अज सवेरे कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान 3-1 नाल हरा दिता है। इस तों पहलां घाना ने पनामा ते 1-0 की शानदार जित दर्ज की। इस दौरान इंग्लैंड ने अपनी मुहिम की शुरुआत क्रोएशिया खिलाफ 4-2 की जित नाल की है। कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी समेत 2 गोल किए। अज राती ग्रुप ए विच चेक गणराज का मुकाबला दक्षणी अफरीका नाल होगा। दूजे मैच विच मैक्सीको ते दक्षणी कोरिया आमो सामने होंगे। अंत विच चोणवीआं खबरां ते इक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल वीवाटेक सम्मेलन विच शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के टीचे नूं हासिल करने लई जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास यात्रा विच पिछे न रह जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को पश्चिमी बंगाल विधानसभा च विरोधी धिर के नेता नियुक्त करने के फैसले से कोई अंतरिम रोक लाने से इनकार कर दिया है। FIH महिला नेशनल कप हॉकी में भारत उरुग्वे को 3-2 नाल हरा के सैमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला प्रदेशिक खबरों का बुलेटिन शाम 6:20 से होगा। नमस्कार।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स करेंगे। वो वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा, जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऋतव्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई उबरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 7 अफराद हलाक हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमतनामा पर अमल शुरू हो गया है, जिसकी वजह

किए जाने को चैलेंज किया गया है। जस्टिस कृष्ण राव ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मुद्दा अलह को 3 हफ्ते के अंदर अंदर अपने हलफनामे दाखिल करने की हिदायत दी है, जबकि दरखास्त दहिंदा को मजीद 2 हफ्ते का वक्त दिया है कि वह अपना जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली समाअत 28 जुलाई को होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। ये सभी लोग एक ही गांव के थे। इनमें 3 सगे भाई और एक शादीशुदा जोड़ा था। यह हादसा चुराह असेंबली हल्के की पुखरी मसरूंद सड़क पर मानी जीरो के करीब पेश आया, जब एक बोलेरो गाड़ी काबू से बाहर हो गई और तकरीबन 500 मीटर दूर गहरी खाई में जा गिरी। चंबा के सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने अमृतसर में एक घर को उर्क किया है, जिसका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा के एक कारिंदे से है। ये शख्स सरहद पार मुनशियात और दहशतगर्दी के नेटवर्क के एक केस में मुलव्वस है। ये नेटवर्क पाकिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुल्कों में फैला हुआ है। सरकारी जराये के मुताबिक ये कारिंदा अंकुश कपूर इस नेटवर्क का भारत में एक बुनियादी कारिंदा है। NIA की तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि अंकुश के रابطے दुबई में मुकीम एक मुलजिम से हैं, जिसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा से है। अंकुश को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जिसकी शनाख्त एक साजिश तैयार करने वाले एक बहुत ही अहम कारिंदे के तौर पर की गई है, जिसका ताल्लुक नशीले मादों की स्मगलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और तकसीम से था। अमरीका और ईरान के दरमियान एक अहम मुफाहमतनामा लागू हो गया है, जिसके तहत लगभग 4 महीने से जारी लड़ाई फौरी तौर पर खत्म हो गई है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान एक जामे अमन समझौते के खातिर 60 दिन तक गुफ्तगू जारी रहने की भी गुंजाइश रखी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्विट्जरलैंड में तयशुदा मीटिंग से पहले 14 निकाती समझौते पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए गए हैं। समझौते के तहत फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाएगी। दोनों मुल्क दुश्मनाना कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे। इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तवील अरसे से जारी तनाजे को हल करने के लिए एक खाका तय करेंगे। मुफाहमतनामे के तहत अमरीका ईरान के गिर्द नवाह में बहरी नाकाबंदी खत्म करना शुरू कर देगा और आबनाए हुर्मुज के रास्ते बहरी जहाजों की आमद रफ्त को 30 दिन के अंदर अंदर मामूल पर लाने के लिए काम करेगा। न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH हॉकी कप में पूल ए में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो पूल ए में सरफहरिस्त आ गया है। शुरू में भारत पर 1 गोल किया था, जिसके बाद दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने उरुग्वे पर 1 गोल किया। फुटबॉल में कोलंबिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप के में एक मैच में उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। ये मैच आज सुबह मेक्सिको शहर के स्टैडियो एस्टिका में खेला गया। इससे पहले ग्रुप एल में घाना ने पनामा पर 1-0 से जीत हासिल की थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स कर रहे हैं। वो वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26,000 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा, जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में रितव्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई उबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में एक ही गाँव के 7 अफराद हलाक हो गए। और अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर अमल बरामद शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अमन मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता

द्वारा लागू शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबार

0: विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति

0: प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमरीका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दरअसल पयंतेज आकाशवाणी दिल्ली कना नेशनल न्यूज सर्विस प्रोग्राम पिन मीडिया वेविका अचस आकाशवाणी कारगिल ना जिर वक्सपोंगी में तुसुत निज नफेत संसुक कसता NCRT स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम यन मजद उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्य

0: कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: और जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी।

0: ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ

पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर

0: चारों तरफ कैसी बहार है।
1: देखो
0: वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? मां के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
3: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो?
3: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
3: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
3: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए।

0: तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तो चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बहार के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच, तुम बड़ी सुंदर लगती

0: तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन है?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, हा? बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
2: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
4: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
4: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
5: माँ
4: ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
5: क्या है बच्ची? उफ, क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
4: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
4: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की मीटिंग कर रहे हैं। वो वाइवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान एक समझौते पर अमल शुरू हो गया है और आइंदा बातचीत भी जारी रहेगी। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तजारती समझौते पर अगले माह की 15 तारीख से अमल शुरू होगा। मरकज माली साल 2026-27 में 26,000 किलोमीटर तवील देही सड़कों की तामीर करेगा, जिन पर 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। और हॉकी में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराया, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड में जारी FIH खवातीन के नेशंस कप में सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर अजम नरेंद्र मोदी इस वक्त पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के

बहुत सी आला सतह की मीटिंगें कर रहे हैं। ये मीटिंगें वो भारत फ्रांस इक्तिसादी और सनती ताबून को गहरा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर कर रहे हैं। वजीर आजम फ्रांस के सदर इमानुएल मैखों के साथ वाइवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। ये समिट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की यूरोप की सबसे बड़ी तकरीब है, जिसमें उम्मीद है कि जनाब मोदी भारत के इख्तिरा से मुतालिक तरक्की पाते हुए इको निजाम और टेक्नोलॉजी की पेशरफ को उजागर करेंगे। वाइवा टेक समिट में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन है, जो भारत और यूरोप के दरमियान इख्तिरा से मुतालिक इको निजाम की शराकत दारी के बड़े इम्कान की एक अलामत है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा का 5 रोजा दौरा शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के पहले दिन वो बैतूल पहुंची, जहां उन्होंने रूहानी बेदारी के जरिए कबायली तबकों को बाख्तियार बनाने के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम का एहतमाम प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरिया विश्वविद्यालय ने किया था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद कबायली अफराद को बाख्तियार बनाना है, और ये न सिर्फ खत्ते के लिए बल्कि पूरे मुल्क और मुआशरे के लिए अहमियत का हामिल है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि भारत को तरक्की याफ्ता बनाने का मकसद हासिल करने के लिए जरूरत इस बात की है कि मुआशरे के सभी तबके को तरक्की के सफर में पीछे न छोड़ा जाए। मरकज माली साल 2026-27 के दौरान देही इलाकों में 26,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तामीर करेगा। ये देही तरक्की की वजारत के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और देही इलाकों में मुतालिका सरगर्मियों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। आला सतह की एक मीटिंग में देही इलाकों में सड़कों से मुतालिक प्रोजेक्टों की पेशरफ का जायजा लिया गया। मीटिंग की सदारत देही तरक्की के महकमे के सेक्रेटरी रोहित कंसल ने की। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई रियासतों के आला एहलकारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। कौमी तहकीकती एजेंसी NIA ने अमृतसर में एक घर को कुर्क किया है, जिसका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा के कारिंदे से है। ये शख्स सरहद पार मुनशियात और दहशत